0: प्रेम से बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय. ब्यूटिफुल भजन दिस इवनिंग. मेनी थैंक्स टू आवर टीम ऑन स्टेज. सो लेट्स ऑल प्लीज स्टैंड एज वी हैव ऑल क्लोजिंग आरती एंड ऑफ कोर्स अदर थिंग्स विल फॉलो.
1: एक दधन गजवर्ण को एक दंतम सुरभकर्णम गजवक्त्रम.

ए साहिबा, गोवाने का खाने का पीने का और मस्त चिल मारने का, लेकिन दम दम बिल्कुल नहीं मारने का।

चराचर जगत् संरक्षणीं सत्पदां चंचन चंपक नासिकाग्र विलसन् मुक्तामणि रंजितां श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये। ओम श्री दुर्गा लक्ष्मी सरस्वतीभ्यो नमः।

जय श्री रामंसो तुलसीदास ही से सिंदोहा बार बार स्तुति करी प्रेम सहित सिरनाई ब्रह्मा भवन सनका दीजो अति अभीष्ट भरक पाई। एंड तुलसीदास श्री फ्रांसिस सेज टू अस दिस मॉर्निंग, बार बार स्तुति कर और प्रेम पूर्वक से निवाकर तथा अपना अत्यंत वरदान पाकर सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को लौट गया। तुलसीदास श्री सेज फ्रेंड्स, हैविंग एक्सटोल्ड द लॉर्ड अगेन एंड अगेन, गिवन प्रेज द फोर माइंड बोर्न सन्स ऑफ ब्रह्मा जी, दे बाउड एंड हैविंग गॉटन दर्शन ऑफ भगवान, दे वेंट बैक टू देयर फादर्स अबोर्ड इन ब्रह्मलोक। एंड सो हैविंग गॉन देयर फ्रेंड्स, ब्रह्मा जी देयर फादर, ही इंक्वायर्ड फ्रॉम देम एज टू हाउ वाज द लॉर्ड डूइंग ऑन प्लैनेट अर्थ। एंड दे ऑल फ्रेंड्स दे स्टार्टेड टू नरेट राम्स कथा। एंड सो सत्संग माय डियर फ्रेंड्स इज टेकिंग प्लेस इन ब्रह्मलोक विद ब्रह्मा जी। भगवान श्री राम फ्रेंड्स ही रिमेन देयर सिटिंग ऑन द स्प्रेडिंग शेड ऑफ द मैंगो ट्री, एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग हैपन्स as we will hear in the Katha. Jai Shri

मीराबाई कहती हैं, कृष्ण मैं तुम्हारे बिना रही कैसे सकती हूँ, तुम पेड़ हो तो मैं उसका एक पत्ता, तुम सरोवर हो तो मैं उसकी मछली, तुम्हारे बिना

घर की शोभा प्रेम पुरुष है, पुरुष की शोभा ना दिए जान। घर की शोभा प्रेम पुरुष है, पुरुष की शोभा नारी जान, और नारी की शोभा पति व्रत रहे।

0: मुख की शोभा सत्य वचन है और हाथ की शोभा दान। My dear brothers and sisters, the beauty of the mouth is when it speaks the truth, and the beauty of the hand is when it gives charity.
1: मुख की शोभा सत्य वचन है और हाथ की शोभा दान और दान की शोभा लबो ना है कृपा राखो भगवान।
0: God give you more. Oh,

0: लिसन,
1: जिस घर में ये सब शोभा वे घर स्वराज समान. It said a home that has all these things is like heaven. जिस घर में ये सब शोभा, all this beauty, ये घर स्वराज समान is like a house in heaven. So this is like a house in heaven. This is why we don't have no crying.
2: जिस घर में ये सब शोभा वे घर स्वराज समान है. चंद्र सखी बलु बाल कृष्ण चभी, चंद्र सखी बलु बाल कृष्ण चभी, हरि चरणन में धरिए ध्यान. क्या

सूर्याय नमः, आदित्याय नमः। श्रोताओ, भगवान सूर्य जिन्हें आदित्य नाम से शास्त्रों में जाना जाता है, वे इस सृष्टि के साक्षात देवता हैं जिनका प्राणी प्रतिदिन दर्शन करता है। आइए भगवान सूर्य नारायण के चरणों में नमन करते हुए उनका गुणगान करें।